Vas-y. नमाजी, जरा ज़कात को एक तरफ छोड़ते हैं, जरा नमाज को देखते हैं। ये बेनमाजी इंसान कैसा है? आप जानते हैं कि इस जमीन पर चलने वाला ये बदतरीन इंसान है। अल्लाह ताला का मुनादी इस पाक घर में ऐलान करता है, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह। वो जुबान से तो जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन अपने हाल से क्या कहता है, मैं कामयाब हो चुका, मुझे जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला के घर में आता और नमाज पढ़ता, बाजमात 5 वक्त, फजर की नमाज भी, बाज लोगों के प्रोग्राम में फजर की नमाज नहीं है, नमाजें कितनी पढ़ते हो, 4। अल्लाह ताला ने तो 5 हुक्म दिया है यार, वो भी पढ़ लेंगे, पिछले 10 साल से कह रहे हैं वो भी पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, आज तक नहीं पढ़े। कब पढ़ते हैं जानते हैं? जब रात को इमरजेंसी में अस्पताल जाते हैं ना, बच्चा बीमार होते हैं, खुद बीमार होते हैं, कोई मुसीबत पड़ती है या मजबूरन जाना पड़ता है, लोग पढ़ते ही वो भी पढ़ लेते हैं, अपने प्रोग्राम में फजर की नमाज नहीं है। याद रखें, जो 5 नमाजों में से 1 नमाज कम करते हैं वो भी बेनमाजी है, जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी बेनमाजी है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, छोटी सी सूरत है, बच्चे भी जानते हैं, सूरत अलमाउन, अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिक अल्लज़ी यदुउ अल्यतीम वला यहुज्जु अला ताआमिल मिस्कीन, आगे फवैलुन लिलमुसल्लीन, नमाजों के लिए वेल है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजी तो हैं लेकिन मुकम्मल नमाजी नहीं। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया अल्लाह ताला, साहून, भूल जाते हैं। क्या भूलते हैं? शायद ये भूल जाते हैं कि नमाजें 5 हैं, 5 से कम नहीं। शायद वो भूल जाते हैं कि एक नमाज को छोड़ने वाला भी बेनमाजी है, 5ों को छोड़ने वाला भी बेनमाजी है। शायद वो भूल जाते हैं कि उनके रब की पकड़ बहुत सख्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करता है वो अल्लाह ताला के जिम्मे में आ जाता है, उसका जिम्मेदार अल्लाह ताला है। सारा दिन, और जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते बाजमात जानबूझ के, उज्र शरई तो अलग बात है, तो वो अल्लाह ताला के जिम्मे में नहीं आना चाहते खुद, और जो लोग अल्लाह ताला के जिम्मे में नहीं आना चाहते उनके साथ क्या होगा, आप सोच सकते हैं। दूसरी हदीस में तिर्मिजी की रिवायत में आया है, ये अजीम हदीस है, जरा से थोड़ा सा गौर की जरूरत है, मैं जानता हूं आप थक गए होंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये एक अजीम हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस कुदसी में, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी, ये भी अल्लाह ताला के कलाम है, कुरान मजीद के अलावा हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, यबन आदम, तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, वक्त निकालो मेरी इबादत के लिए। क्या अता करूंगा, अमला सदर का गिनन व अशुद्ध फकर, तुम्हारे सीने को अमीरी से भर दूंगा, गनी बना दूंगा तुम्हारे सीने को, तुम्हारे दिल को अमीर और गनी बना दूंगा मैं, और तुम्हारी गुर्बत और फकर को मिटा दूंगा। वही नम तफाद, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारे पास मेरी इबादत के लिए वक्त ना होगा, मलअतु यदैक शुग्लन, तुम्हारे दोनों हाथों को कामों से भर दूंगा, तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी किसी चीज की, वलम असुद्दु फक्र, और तुम्हारी गुर्बत कभी नहीं मिटाऊंगा, तुम्हारे दिल में हवस बढ़ती जाएगी, कभी सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा, इस दुनिया के पीछे भागते दौड़ते रहोगे,

एक मेडिकल रैप आया था मेरे पास, दवाइयों के लिए आते रहते हैं, सूर्या से था, सीरिया शाम से। तो मेरे हाथ में किताब ही पढ़ रहा था, वो किताब में, जब मरीज नहीं होता मैं किताबें पढ़ता रहता हूं। वो मेडिकल रैप की आदत होती है ना कि डॉक्टर से दोस्त लगाने के लिए जरा सवाल पूछना, जरा करीब आना, ताकि वो दवाई ज्यादा लिखे, एक तरीका होता है उनके, गुर होते हैं। तो पहले भी आता था, उसकी आदत है, जो किताब पढ़ता था, जो मैं कुछ कर रहा था उसके बारे में पूछता जरूर था, फिर अपनी दवाई प्रोडक्ट की बात करता था। फिर ऐसा कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, मैंने कहा यह किताब है, इसमें लिखे मसाइल उल जाहिलिया, जहलियत के मसाइल, शमहद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह की किताब है, बड़ी प्यारी किताब है, मैं वो पढ़ रहा था। कहते हैं हाँ अच्छा, वो जहलियत के मसाइल जिसमें जिंदा बच्चों को गाड़ देते थे जमीन में, वो मसाइल। मैंने कहा ये मसला भी है, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, तकरीबन 130 के करीब मसला है, आप तो एक का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा ये कौन से हैं? मैंने कहा आपको 130 तो नहीं बता सकता मैं कौन से, लेकिन ये एक दो सुन ले आप। पहला शिर्क है, दूसरा फिरकाबंदी है, तीसरा बगावत है हुकुरा वक्त के खिलाफ, ये भी जाहिलियत के मसाइल में है, एक मसला है। कहते क्या मतलब है कि आज जो हो रहा है ये जाहिलियत का मसला है? आजकल जो हो रहा है ये हुकूमत के खिलाफ जो बगावत है, ये सब जाहिलियत का मसला है? मैंने कहा जी आपके सामने ये दलाइल है और इमाम साहब ने बात की है। इसका मतलब है जो हमारा हुक्मरान कर रहा है, बशार जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। मैंने कहा नहीं, किसने कहा वो ठीक कर रहा है? हजार लोगों को उसने कत्ल किया है, उसने गलत किया है, वो अल्लाह ताला के जवाब दे है, एक एक खून का जवाब देगा वो। लेकिन मेरा सवाल यह है, एक साल पहले उसने किसी को कत्ल किया था इस तरीके से? कहते नहीं। मैंने कहा आज क्यों कत्ल किया है? कहते निकलना तो जरूरी था ना, मैंने जरूरत है तो फिर कत्ल भी जरूरी हो गया। मैंने कहा इस चीज को छोड़ दें, इस बहस को छोड़ दें, आप मुझे बताएं अगर यह शख्स मर जाता है, आसमान से बिजली गिरती है और उसको कत्ल कर देती है, या किसी वजह से मर जाता है वो, आपके पास नेमुल बदल कौन है? कोई होना तो चाहिए ना, ठीक है, एक जालिम किया दूसरा अच्छा तो होना चाहिए, एक नेमुल बदल कौन है आपके पास? कहते आपका मतलब यह है कि पूरे सूर्य में एक शख्स भी इस काबिल नहीं है, अच्छा नहीं है वो हुक्मरान बन सके? मैंने कहा भाई मैंने ये नहीं कहा कि पूरे सूर्य में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, मैंने ये कहा वो कौन सा अच्छा इंसान है जिस पर आप राजी हो जाएंगे कि वो आपका हुक्मरान बन जाए? फर्क है दोनों में कि नहीं? वो कौन सा अच्छा इंसान है जिस पर आप लोग सब राजी हो जाएंगे? थोड़ा सोचने पड़ेगा। कहते बहुत है। मैंने कहा एक नाम दे दो मुझे, दो नहीं एक नाम। कहते फुलान गालियोन, नाम किसी का लिया ना कि गालियोन मुसलमान है? कहता हाँ है तो मुसलमान, मुसलमान है ये। मैंने कहा अच्छा, क्या ये गालियोन साहब जो है ये अल्लाह ताला की शरीयत का नफाज करेंगे या नहीं करेंगे? कहते शरीयत के नफाज का आपका क्या मतलब है कि चोरी करे तो हाथ काटे जाए उसके? मैंने कहा ये एक हिस्सा है शरीयत के नफाज का, सबसे पहले तौहीद को आम करना, इत्तिबाए सुन्नत को आम करना, यह भी एक हिस्सा है शरीयत के कानून का नफाज भी, यह भी एक बुनियादी हिस्सा है, लेकिन इससे पहले बाद और चीजें भी हैं। कहते नहीं वो सेकुलर सोच रखता है, वल्लाह मैं कसम खा रहा हूं। मैं सेकुलर सोच रखता है कि क्या मतलब है सेकुलर है? कहते नहीं मुसलमान लेकिन सेकुलर सोच रखता है। मैं अल्लाह ताला से डरो, या मुसलमान है या सेकुलर है, दोनों एक साथ एक वक्त में जमा नहीं हो सकते। सेकुलरिज्म का मानना है कि दीन को इस दुनिया के मामला से खारिज कर दो, दीन सिर्फ नमाज है, दुनिया से इस दीन को खारिज कर दो, मस्जिद के महदूद है, ये मंदिर तक महदूद है, या चर्च तक महदूद है, ये इस किसका नाम दीन है? मैंने कहा अल्लाह ताला से डरो, मुझे ये बताओ। उसने खुद कहा, कहता है वैसे आपस की बात है, क्या आपको अच्छा लगता है कि एक शख्स बेचारा चोरी करता है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है, किसी वजह से वो चोरी करता है, जब साबित हो, जब वो पकड़े उसका हाथ काट दिया जाता है? मैंने कहा अल्लाह ताला का दीन है जब चोरी साबित हो जाती है 8 शर्तों के साथ, बताए ये नहीं कि चोरी पकड़ो हाथ काट दो, आप भी काट सकते, आप भी नहीं, नहीं ऐसे नहीं है, हम नहीं काट सकते हाथ, उसूल हैं शरीयत के, चोर की चोरी जब साबित हो जाए उसकी 8 शर्तें हैं, जब साबित हो जाए इन शर्तों के साथ फिर दाएं हाथ इस कलाई के जोड़ से काट दिया जाता है। मेरे कहा जी मैं राजी हूं, अल्लाह ताला का दीन ऐसे होना चाहिए।

क्या है, क्या तुम उसको इल्म है कि नहीं, क्या जवाब दिया, इसकी तैयारी करनी है। दूसरी गलती, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ूम करते हैं, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स निकला था, यानी असल में यहूदियों का अकीदा है, यहूदी हैं जो हैं वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ताखी करते हैं, उनके नजदीक नबी और आम इंसान दोनों बराबर है। तो आप देखेंगे जो तहरीब शुदा बाइबल आज मौजूद है, नऊज़ बिल्लाह नबी जना करता है, नऊज़ बिल्लाह नबी झूठ बोलता है, और बड़े अंबिया नबी का नाम भी लिखते हैं, नबी भी मानते हैं, फिर ऐसे अल्फाज, नबी धोखा देता है आखिर तक। ये तो यहूदी है, इन्होंने अपनी किताब खुद तहरीफ किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स जो खुसरा तमीमी से, बुखारी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माल गनीमत आया, एक जगह से सुहैल बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु लेके आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल को तकसीम कर दिया, काफिरों को दे दिया ताकि उनका दिल नरम हो और इस्लाम की सामने दीवार बनकर ना रहे। एक हिकमत थी, तो एक शख्स उसके खड़ा हुआ और उसने कहा, मां अनसफ्त या रसूल अल्लाह, अल्लाह तआला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने इंसाफ नहीं किया, आपने इंसाफ नहीं किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद गुस्सा आया, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो उसमें इंसाफ कौन करेगा, यानी ये गुस्ताखी कैसे मुझसे निकली, चंद दिरहम के लिए, चंद सोने, थोड़े से सोने के लिए इतनी बड़े लफ्ज मुंह से निकाले कि मैंने इंसाफ नहीं किया। आसमान से खबर आती है उसकी तस्दीक करते हो तो, और जमीन का थोड़ा सा मालूम बताया दे दिया, ये कहने लगे कि मैंने इंसाफ नहीं किया। तो उस वो शख्स चला गया सजना खालिद बिन वलीद ने तलवार निकाल कत्ल करने के लिए, ये कुफर है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, इसे कत्ल ना करो, लोग ये ना कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कत्ल करता है। जाहिर वो सहाबी था, जाहिरन सहाबी दिल में उसके निफाक था, ऐसे मुंह से लफ्ज निकला, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया सहाबा कराम को कि इस शख्स के कमर से जो लोग पैदा होंगे, यानी कि औलाद औलादों की औलाद में से, उनके सिफात बयान की, कुरान पढ़ेंगे उनके हक से नहीं उतरेगा, तुम लोग अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के सामने हकारत की नजर से देखोगे, यानी उनकी नमाज सहाबा की नमाज से ज्यादा अच्छी होगी, बड़े दिनदार लोग होंगे शक्ल सूरत से, लेकिन दीन से ऐसे निकलेंगे जैसे कमान से तीर निकलता है, स्पीड में और वापस नहीं आ सकता। अगर मैं इनको पाल, यानी मेरी जिंदगी में ये लोग निकल आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो मैं इनका कत्ल करूं जैसे आज इल्म का कत्ल हुआ। ये वो शख्स था, ये कितना बड़ा। अब उस शख्स ने ये गुस्ताखी की कि नबी अलैहिस्सलाम ने ना इंसाफी की, जुल्म किया। उनकी औलाद में से जो आए सैयद उस्मान बिन अफ्फान को जालिम कहा, ये खवारिज सिफात बयान कर रहा हूं, जालिम कहा, नहीं रुके, सहाबा करम ने आगाह किया, उन्हें मना किया, कुरान मजीद की दलाइल पेश की, अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, नहीं सुनी, सैयद उस्मान बिन अफ्फान की शहादत हुई, ना रुके, फितना और बढ़ा, सैयद अली बिन अबी तालिब को भी शहीद किया, बल्कि उससे पहले फितना और बढ़ा, बात जुल्म तक थी लेकिन और कितना बड़ा, क्योंकि उलमा की तरफ रुजू नहीं किया, अपनी हवा नफ्स के पीछे लगे रहे, पहले से अली बिन अबी तालिब पर कुफ्र फतवा लगाया कि नऊज़ बिल्लाह वो काफिर है। देखें, बात जुल्म से शुरू हुई, अब कुफ्र पे आ गई, और फिर उन्हें शहीद भी किया। इतनी नहीं, आजकल के दौर में उनकी औलाद आज भी मौजूद है, और उनकी निशान यह है, उन्होंने सिर्फ एक सहाबी को, बाद सहाबा को काफिर कहा, उसके बाद जो आगे इतना बढ़ा और आज के दौर में ये लोग मौजूद हैं, वो कहते हैं हर कबीरा गुनाह करने वाला मुसलमान काफिर है। बात जुल्म से शुरू हुई, रुके नहीं, फिर जुल्म पे आई, रुके नहीं, फिर कुफ्र पे आई, रुके नहीं, अब सारे के सारे मुसलमान जो भी कबीरा गुनाह करते हैं वो दारिस्तान खारिज काफिर है, यानी शराबी काफिर है, जानी काफिर है, वर्दे का नाफरमान काफिर है, झूठ बोलने वाला काफिर है, वादा खिलाफी करने वाला काफिर है, आखिर तक जाए तो मुसलमान कौन रहा। अगर यह अकीदा किसी का हो तो आज जमीन पर कौन मुसलमान है। ये बातिल अकायद है मेरे भाइयों, आज ये राइज ही मौजूद है।